0: right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद। 4941, आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी।
2: खुश खबरी, हगा ठोल बीमारान चचा हड़ुकी माछी याद माते दो नपस गलत पेवन शिवी चिदचा दखपो औ दला सुनो गुतो रघुन बन शिवी औ या गुते बेहरकत शिवी औ दचाचे दखपो द कुंडो दनन लाड़ खत्म शिवी कोपे दर्दुना औ टकार कवि हगटोली जनाना चिदचा खपे औ लसुना सुनकीगी औ हगटोल मरीजान कमचे दमला दमहरो याद पटो मरीजान हुई याद माशुमान उखपी कगी हुई नु दहा टोलो मरीजानु द पारा द खुशालय खबर उस बाद हरिद्वार पर उस बांधी सहर द अतो बजो नवाखली माजिगर तर सलोर बजो पोरे द इस्लामाबाद और द पेखबर नुमावड़े डॉक्टर आर्थोपेडिक एंड ट्रामा सर्जन डॉक्टर तारिक रहीम सेब MBBS MCPS FCPS एक्स रजिस्ट्रार HMC पिशावर सहर द अतो बजो नवाखला माजिगर तर सलोर बजो पूरी तासो तशरीफ रवड़े शे नुपा तैयार साथे बिलाल प्लाजा अल सेद CNG ता महामख कोंडा मोड़ जहांगीरा रोड सवाबी मजीद द मालूमात द पारा याद नंबर अगस्तो द पारा पदे नंबर राबितो के 0314-15-13-232 यानि के 0314-15-13-232।
3: पुख्तुनख्वा मेडिकल सेंटर शाह मंसूर सवाबी कमजे चे द मलिक नु मवड़े डॉक्टर्स व मौजूद हुई यानी प्रोफेसर डॉक्टर इब्राहिम शाह कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर सुरैया इसरार गायनोकोलॉजिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पवाद जान कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट यानी द रघुनो और द पटो स्पेशल डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सलमान कमाल अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अब्बास चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट और डॉक्टर तारिक शहाब स्किन स्पेशलिस्ट ब मौजूद हुई जमुन सहूलियात थी NICU यानी द माशुमानो द पारा द शिशु सहूलत इको ECG एक्सरे अल्ट्रासाउंड लेबोरेटरी फार्मेसी ऑपरेशन थिएटर औ लेबर रूम द मरीजानो द पारा स्पेशल कमरे द रेडियो दिल पर पवास्ता रातलून के पेशेंट्स द पारा बापा ऑपरेशन लेबोरेटरी और मेडिसिन बांधे 10% ना 33% कोरे डिस्काउंट हम मौजूद दे पता दा पख्तुनख्वा मेडिकल सेंटर नेज़ बाचा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स शाह मंसूर सवाबी टेलीफोन नंबर दे 0938-280-139 मोबाइल नंबर दे 0303-292-6858।
4: ये है एक दुनिया इल्म और अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है। द कादी आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजाम तालीम सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा बाग इरम मर्दान शेरगढ़ मर्दान सवावी जैदा और मैनी चौक कोठा या हेड ऑफिस के नंबर 09382801 पर रابطہ कर सकते हैं।
5: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
6: जो उस्ता कालू द पारा शारजी तसिंगलार शमा
5: ओहो पमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा
6: नुदा सिवाया कना
5: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स फोन 0938273265।
3: ټوپی میډیکل کیئر سنټر کمزے چې به میډیکل سپیشلسټ ډاکټران د عوام د خدمت لپاره موجود وي چې پکې ډاکټر عامر اسلم کارډیولوژیست اینڈ میډیکل سپیشلسټ د اتوار پر ورځ 10 بجو نه تر ماښام 4 بجو پورې لیډی ډاکټر فریحه مشتاق فیزیوتراپیسٹ د پیر نه تر جمعرات ورځ پورې سحر 9 بجو نه تر مازیګر 4 بجو پورې ډاکټر وکاس احمد کنسلټنټ اینڈ سائیکیٹرسٹ د اتوار پر ورځ 11 بجو نه تر ماسپخین 3 بجو پورې گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ د پیر نتر ہفتی پوری مازیگر د سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پوری با اوپی ڈکوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر آیاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-686-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
0: دادی ریڈیو دل ویل ستاسو دجرا آواز